आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. All the variety you need. The night shift. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा, डर कैसे।
1: बिग 106.2

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक,
2: गुड मॉर्निंग, 7:07।
1: Bollywood.

0: 7:10 on the clock, it's a Tuesday morning. Here's an amazing story for you.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: एक बहुत ही अमीर फैमिली का एक बच्चा जर्मनी गया फॉर फर्दर स्टडीज एंड कुछ दिन के बाद जाने के बाद उसने अपने पापा को एक चिट्ठी लिखी कि पापा आई लव जर्मनी, यहाँ के लोग भी दे आर वेरी फ्रेंडली, बट एक प्रॉब्लम है कि व्हेन माई प्रोफेसर्स, मेरे सारे टीचर्स दे अराइव टू कॉलेज इन अ ट्रेन, वो ट्रेन से आ रहे हैं और मैं रेंज रोवर में आता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ दिनों के बाद उसके अमीर बाप ने उसे $10 million भेजे, साथ में एक चिट्ठी, चिट्ठी में लिखा हुआ था इन पैसों से जाकर एक ट्रेन खरीद लो एंड आइंदा से डोंट एम्बैरेस अस इन फ्रंट ऑफ दीज फॉरेनर्स। जस्ट समथिंग टू रेव योर इंजन अप ऑन दिस 4th of August, इट्स अ ट्यूजडे। बस इतना सा ख्वाब है वाली ये कहानी है। आप बताइए इस गाने के अलावा, दैट आई ऑलरेडी गॉट लाइंड अप फॉर यू, व्हाट इज दैट वन सॉन्ग दैट यू वांट टू लिसन टू, कौन सा वो गाना है जो आपकी बैटरीज को रिचार्ज करता है। हम सबकी करिए ना बैटरीज रिचार्ज थ्रू दैट सॉन्ग। यू कैन सेंड योर रिक्वेस्ट फॉर वन फुल आवर टिल 8 AM दिस मॉर्निंग। द नंबर इज 0543091062। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 0543091062 पर।

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Yes, it's 7:21 on the clock. This is the show that gives you that रोजाना सुबह वाली जो energy होती है जो आपको चाहिए होती है to face that brand new day at work. लेकिन आज के modern lifestyle में ताकत की कमी होना, कमजोरी feel करना is very common. Stress, fast food, fast paced lifestyle can make you feel low, right? But you don't have to. Dabur Shilajit capsules are here. They help increase muscle strength, stamina and power. शेर की तरह बने मजबूत. हर दिन की शुरुआत करें with Dabur Shilajit. मिटाए कमजोरी, बढ़ाए रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. 100% natural Ayurvedic supplements that make you feel stronger and more confident. Aapki jeet, Dabur Shilajit. Consult your doctor before taking medicines and pharmaceutical products.
0: Big.
2: Fire hai tu.
3: Wild fire hai. Mera naam hai Pushpa. Pushpa Raj. Apne dam pe banaye main. Naam kaafi hai, pehchan ki zarurat nahi hai.
0: Big 106.2.
4: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
5: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
4: अलरास बोले तो
5: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
4: इसी बात पे तुझे जादू की झप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
6: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800 Alfred 24/7.
7: Kehte hai na, try and try till you succeed. Haar na maan mere sher, mazboot ban mazboot. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
8: दिस समर दिस बिग कैश विन्स विद बिग टिकट्स,
9: अ गारंटीड 15 मिलियन दिरहम ग्रैंड प्राइज अवे,
8: प्लस विद बिग स्पिन द चांस टू विन अप टू 1 मिलियन
9: and 5 consolation prizes of 100,000 dirham each.
8: Don't forget the 4 weekly cash prizes of 25,000 dirhams.
9: Buy now at bigticket.ae.
10: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply. Are you-

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: गुड मॉर्निंग, 7:25 ऑन द क्लॉक ऑन दिस ट्यूसडे की सुबह 4th ऑगस्ट। एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 45 डिग्रीज सेल्सियस टुडे, लेकिन फिलहाल 37 डिग्रीज सेल्सियस, ह्यूमिडिटी एट 50%, विंड्स ब्लोइंग एट 11 किलोमीटर्स पर आवर, हाईज ऑफ 41, लोज ऑफ 37 राइट नाउ।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: अरिजीत सिंह सिंह इक्वारिया, एंड आई कंप्लीटली एग्री. कुछ लेजेंड्स, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो सिर्फ इक्वारी आते हैं. दे आर वंस इन जनरेशन भी नहीं, सेवरल जनरेशन, वंस इन अ सदी भी नहीं. दीज आर्टिस्ट कम ओनली वंस.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: इफ यू आर अ बॉलीवुड फैन, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. 4th of August, वेरी वेरी स्पेशल डे, नॉट जस्ट फॉर बॉलीवुड फैंस बट यू नो फैंस ऑफ म्यूजिक. ऑफ कोर्स म्यूजिक नहीं होता तो हम लोग नहीं होते, रेडियो स्टेशंस वुड नॉट बी देयर. एंड यू नो, अगर ये वाली आवाज नहीं होती जो आज सेलिब्रेट हमें करनी है, तो आई मीन I don't know. It would be so different because, I mean, this is the one voice which is in the collective memory of more than a billion people. That thought itself is, you know, enough to shock and awe anybody across the world. Aaj hai 4th of August, Kishore Kumar ki birth anniversary. Of course, the voice that formed inspiration for generations to come. It was a voice that defined not just an industry, but a country, and the voice that is, you know, inspired us. It has kind of made us given us enjoyment. It has given us melancholy. Jitne bhi sare ras hote hain, moods hote hain, sare cover kiye agar ek awaaz ne. That is Kishore Kumar, and we are saying happy birth anniversary to the legend Kishore Kumar ko. Do you have a favorite Kishore song? If yes, then you can request for that on our WhatsApp number 0543091062. Filhal, here's one of my favorites.

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे

0: तमा तमा लोग जो भी लेना है उस सबके लिए पैसे लगते हैं भाई।
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: तो फिर 7:50 on this Tuesday की सुबह, let's do a bit of लेन देन की बात है। क्या चल रहा है financial sectors में? 24 कैरेट 1 ग्राम सोना आज सुबह 489 dirhams and 25 fils. कल बंद हुआ मार्केट 485.5, so it's up by 3 point something. Then there's 22 कैरेट 1 ग्राम सोना आपको पड़ेगा 453 dirhams में, up from 449.5 last evening. आज सुबह एक एक्सचेंज रेट फॉर द यूएई दिरहम, इंडियन रुपी 25.87, दैट्स 25.87, पाकिस्तानी रुपी 75.65, बांग्लादेशी टाका 33.65. Meanwhile, here's the Dhurandhar version of Oye Oye. This is Big 106.2, the Beat of Bollywood. Good morning.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 8:06।
1: बॉलीवुड।

0: बैंड टॉकिंग अबाउट बीडी जलाईले, आज विशाल भारद्वाज का भी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले ऑन द शो. कीप इट लॉक्ड, दिस इज बिग 106.2 एंड वी आर द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: वाओ, योर हेयर कलर लुक्स स्टनिंग.
2: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स.
1: या राइट, नो इट्स हिना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली. इट्स अमोनिया फ्री एंड एनरिच्ड विद हिना एक्सट्रैक्ट एंड आर्गन ऑयल.
2: रियली?
1: या, एंड विद अ इजी कॉम एप्लीकेटर इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स.
2: आई एम बाइंग इट राइट नाउ.
1: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
3: Introducing the Thumbe International Pathway Medicine Program at Gulf Medical University. Starting with 3 years of the higher diploma in preclinical sciences in the UAE, then completing the remaining 3 years at partner universities in Poland, Romania, the UK, Italy, Malaysia, Uzbekistan, Ghana, Malta, or Egypt for medical degree with affordable tuition fees and scholarships. Your journey to become a globally qualified doctor starts here. Visit gmu.ac.ae or call 056-549-5755. Gulf Medical University. Where the world comes to learn.
4: Namaste.
5: Hola.
4: Assalamualaikum.
6: Bonjour.
7: Ni hao.
6: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
8: InsuranceMarket.ae. Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, InsuranceMarket.ae.
9: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत, डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
12: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडिल ईस्ट.
0: All right, one blanket rule you got to follow is that until the 6th of August, there are chances of sporadic rainfall across the UAE. Filhal, aise koi asar nazar to aani rahe. Mostly sunny start to this Tuesday morning, humidity at 43%. It's 38 degrees Celsius right now, winds blowing at 13 kilometers per hour, highs of 41, lows of 37 degrees Celsius.
12: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
1: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
2: नमस्ते.
3: ओला.
2: अस्सलामुअलैकुम.
4: बोंजूर.
5: नी हाओ.
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया. यस, इवन इफ यू टाइप इन जेन ज़ी लिंगो. इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae. सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स. नो स्क्रोलिंग. विजिट selfdrive.ae. सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू.
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
6: It is 8:25 on the clock. Let's take a look. सबसे पहले at the capital Abu Dhabi. कोई tension की बात वहाँ पर नहीं है. हल्का बुल्का traffic Muzaffar Industrial, and this is going towards Rabdan. Towards the junction of 22, you'll find a bit of congestion out there. Everything else seems to be smooth going. चलते हैं Dubai Sharjah की ओर. 311 E11 heading south going towards Dubai from Sharjah. Both these arteries will face around 6 to 7 minutes का delay. And then there's Beirut Street, D62 is getting busy, especially heading south after Medina Mall. And the star of the show this morning is 66, Dubai Alain Road. But as you go to Creek, Jadaf, heading north, you'll find a 5 to 6 minute delay. In case you don't know anything about this, if you have more info, give me a call, 800-1062.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: 참. 예, 라디오. 자네네, 봐봐. 앞대. 바바바바바브라우. 단파트라우 앞대. 뭘.
1: 106.2. The

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: On this Tuesday की सुबह talking about बेफिक्रे हम लोग ना वी आर द बीट ऑफ बॉलीवुड. हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल बेफिक्रे होकर जाइए जब आप सिनेमा में जाएं तो.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2 The Beat of Bollywood.
0: मतलब टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए यार कि पहले से डिसाइड करो कौन सी फिल्म जाकर देखनी है ये वो प्री बुकिंग ये वो नहीं. हम आपको देंगे ओपन मूवी टिकट्स या यू कैन गो एंड डायरेक्टली पहुंच जाओ सिनेमा हॉल और वहां जाके डिसाइड करो कि यार किसको हम ये टिकट दें और कौन से सिनेमा हॉल में हम लोग जाएं. या सो टू ओपन मूवी टिकट्स जीतने का मौका इन द बिग बॉलीवुड क्विज. आज 4th of August इज द बर्थडे ऑफ वन ऑफ आवर फेवरेट What should I say? Directors. हाँ directors. लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जिसमें director के दो मतलब होते हैं. या so एक तो amazingly he has composed the music for this

एक तरफ चड्डी पहन के फूल खिलाए भी इन्होंने कंपोज किया, दूसरी तरफ ये गाना भी इन्होंने ही कंपोज किया है। एंड साथ में ये वाला भी।

0: Wow, your hair color looks stunning.
1: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
0: Yeah, right.
1: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
0: Really?
1: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
0: I'm buying it right now.
1: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
2: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
4: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
5: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 9:08
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: It's the breakup song, Arijit Singh, Jonita Gandhi, right here on Big 106.2. And सुनते हैं कि ब्रेकअप तो नहीं, लेकिन एक गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई ऑन 311 हेरिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई सिलिकॉन ओएसिस. इसकी वजह से वहां पर काफी लंबा टेल ऑफ ट्रैफिक.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: इसके बारे में और बताने के लिए हमारे संवाददाता मृणाल हमारे साथ फोनलाइन पर. मृणाल, गुड मॉर्निंग. इस वक्त आप डीएसओ में है, कितने लंबी ट्रैफिक वहां पर दिख रही है आपको?
2: सर जी, बहुत ज्यादा गंदी ट्रैफिक है. आई डोंट थिंक आई विल बी रीचिंग बाय 9:30 एज वेल.
0: मृणाल, एक बात सच सच बताना, ठीक है? ये जो आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, आपके माइंड में कितनी बार ऐसा ख्याल आया कि यार ऑफिस पहुंच के भी मैं क्या उखाड़ लूंगा, मैं घर वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं जा रहा ऑफिस यार.
2: काफी दफा ऐसा सोचने में आता है, बिकॉज आई हैव 7 months ओल्ड डॉटर, सो एक तो घर से निकलने का मन नहीं करता, ऊपर से ट्रैफिक में फंस जाओ.
0: The exact same thing happened with me this morning, यार. मेरा 2 साल का बेटा है, so usually, you know, when I'm leaving home, he is fast asleep. लेकिन आज वो उठ गया. और मतलब फिर जो घर से निकलने में जो आफत होती है मृणाल, I completely understand, यार. अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या मृणाल बाबू. तो क्या क्या सीन है आज कुछ? Is it going to be a special Tuesday? Is it going to be worth your while going to office इतना ट्रैफिक में फंस के? Some good meetings are scheduled or something? या नहीं?
2: Yeah, I have a couple of meetings scheduled and a couple of things in my list to wind up before the end of the day.
0: हाँ, कुछ और लोगों को चूना लगाने का प्लान है आज, which is going to make it worth Mrunal's while.
2: हाँ जी, बिल्कुल.
0: चलो, I'm going to make it worth your while getting stuck in so much of traffic, Mrunal. Last time मैंने आपको एक सवाल पूछा था जिसपे काफी सारे लोग clean bold हो गए. I got answers ranging from R.D. Barman to Annu Malik, पता नहीं क्या क्या, but who is that music director plus a film director जिसने कंपोज किया म्यूजिक फॉर चड्डी पहन के फूल खिला है एंड ऑल्सो फॉर सॉन्ग्स लाइक दिस वन? व्हाट इज द करेक्ट आंसर मृणाल?
2: विशाल भारद्वाज.
0: एब्सोल्युटली करेक्ट, विशाल भारद्वाज. की आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है?
2: विशाल भारद्वाज की मेरी फेवरेट मूवी मकबूल.
0: मकबूल, यार, मतलब आई थिंक 10 लोगों से मैं पूछू ना तो 7 का जवाब मकबूल ही आएगा. दैट इज लाइक
2: वैसे तो काफी बड़ी लिस्ट है विशाल भारद्वाज की, बट यस, मकबूल है. फिर रिसेंट टाइम्स पे खुफिया भी अच्छी बनी थी मूवी.
0: ओमकारा
2: विल बी ऑलवेज इन टॉप 5.
0: Even Haider, and then you know what, he kind of started his career with as a music director. He did some amazing music for this film called Marches also. क्या गाने थे यार, मतलब mesmerizing. Gulzar साहब का direction था, वहाँ से उनकी जो partnership है वो शुरू हुई, and it's kind of it's just gone from strength to strength, यार. So
2: both created a magic, I don't know how, in Bollywood.
0: फिर मकड़ी नाम की भी फिल्म आई थी, and then कमीने भी आई थिंक विशाल भारद्वाज की फिल्म थी. तो या it's just amazing. जब भी इनकी फिल्म आती है तो मजा तो आता ही है यार. So enjoy yourself at the movies, Mrunal. Thank you so much for taking part in our contest. जल्दी से निकल जाओ ट्रैफिक पे और चूना लगाना शुरू कर दो, ठीक है? टेक केयर. दैट्स मृणाल, हमारे आज के विनर है. रोज सुबह मौका इन द बिग बॉलीवुड क्विज फॉर यू टू विन दीज 2 ओपन मूवी टिकट्स राइट हियर ऑन द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.
1: बिग 106.2.

0: easy hair color, made in Italy.
1: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
2: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
3: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडिल ईस्ट.
6: 9:18 एंड आपको याद होगा कि परसों तक दिस गोना बी अनस्टेबल वेदर. बारिश कहीं कहीं पर पड़ रही है, स्पेशली एरियाज लाइक मसाफी, वहां तो बहुत जबरदस्त बारिश. इवन रसलखेमा एट सर्टन एरियाज जहां पर देयर वाज हेवी रेनफॉल. सो एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ सीन टिल डे आफ्टर द 6th of August. राइट नाउ इज 39 degrees Celsius ऑन एवरेज अक्रॉस द UAE. ह्यूमिडिटी एट 40%, हाईज ऑफ 41, लोज ऑफ 37 degrees.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Right, the show is brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. You can cover your grey hair in just 5 minutes with Henna Speedy Easy Hair Color. Ammonia-free formula is enriched with henna extract and argan oil. Gives you vibrant, natural-looking color. Works beautifully even on thick hair. Delivering easy, even application. The Easy Comb Applicator makes coloring as simple as combing your hair. Get maximum grey coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy.
0: Big. The Beat of Bollywood.
2: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
4: नमस्ते।
5: ओला।
4: अस्सलाम वालेकुम।
6: बोंजूर।
7: नी हाओ।
6: डिड यू नो? नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: The Big Mix.

0: Just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
1: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: The biggest pizza deal of the season is here. UAE, get ready for Papa John's Mega Week. For 1 week only, from the 29th of July to the 4th of August, buy one large or medium pizza and get another free. Same value, double the pizza. It's the ultimate pizza sale you don't want to miss. Available on the Papa John's app, plus dine-in and takeaway. Don't wait, download the Papa John's app. Mega Week, 1 week only. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
3: गुड मॉर्निंग, 9:28 ऑन द क्लॉक। उस टाइम पहले तो आपको बता ही दिया हमने कि डीएसओ की तरफ जाते हुए ट्रैफिक आपको मिलेगा 3:11 पर, थैंक्स टू मृणाल। एंड देयर इज आल्सो बीन लॉट्स ऑफ कंजेशन आज सुबह से D60 E66 पर दुबई अलेन रोड पर, बट नाउ थैंकफुली इट्स लुकिंग मच मच बेटर। देयर इज D75 इन दुबई हेडिंग टुवर्ड्स दुबई फ्रेम, श्री राशिद स्ट्रीट पर यूल फाइंड अ बिट ऑफ ईस्ट बाउंड ट्रैफिक। देन जबील की सड़कें, यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलेगा 71 गोइंग टुवर्ड्स दुबई मॉल इज अ बिट कंजेस्टेड। देन यू फाइंड ट्रैफिक एज यूजुअल राइट आउटसाइड बिजनेस बे मेट्रो स्टेशन। देन द यूजुअल 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा S112 शारजा इंडस्ट्रियल पर हेडिंग स्पेशली ईस्ट टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी एरिया यूल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन। गेट यू स्पॉट समथिंग, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर।
1: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
4: Yeah.

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: Ah, tu, a che ti rimane di affare.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: आपकी जीत, डाबर शिलाजीत, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
3: नमस्ते,
4: ओला,
3: अस्सलाम वालेकुम,
5: बोंजूर,
6: नी हाओ।
7: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेन ज़ी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
8: Introducing the Thumbe International Pathway Medicine Program at Gulf Medical University. Starting with 3 years of the higher diploma in preclinical sciences in the UAE, then completing the remaining 3 years at partner universities in Poland, Romania, the UK, Italy, Malaysia, Uzbekistan, Ghana, Malta or Egypt for medical degree with affordable tuition fees and scholarships. Your journey to become a globally qualified doctor starts here. Visit gmu.ac.ae or call 056-549-5755. Gulf Medical University. Where the world comes to learn.
1: Big 106.2. That's my song. Bye.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: अगर आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया कंटेंट से ज्यादा इंटरेस्टिंग कमेंट सेक्शन होता है, यू एंड आई शुड बी फ्रेंड्स।
2: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: Yeah, so Tuesday morning, almost 10 o'clock and system bhi mera chok maar raha hai yaar. Lekin haan, is kahani ko sunkar aap bhi thoda sa haste haste chok maar sakte ho, because it has something to do with Shashi Tharoor. And aap jante hain ki inki jo angrezi ko lekar charche sare disha mein phaila hua hai. Chum shale gul. Haan, nahi, lekin Shashi Tharoor ne ab kya kar diya? He went on stage and did the unthinkable. Shashi Tharoor ने जाकर स्टेज पर एक बॉलीवुड गाना गा दिया। या आप गाना सुनिए, उसके बाद मेरे हिसाब से द कमेंट ऑफ द मॉर्निंग मैं आपको सुनाने वाला हूं।
3: आश्रुपी

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 10:07।
1: Bollywood.

0: toured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
4: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
5: 10:11 अभी 40 डिग्री सेल्सियस टच किया है टेम्परेचर ने. विंड्स ब्लोइंग एट 11 किलोमीटर्स पर आर. आप जानते हैं परसों तक अनस्टेबल वेदर, पता नहीं कब बारिश हो जाए. ह्यूमिडिटी राइट नाउ इट्स 39% पर. हाईज ऑफ 41 राइट नाउ, लोज ऑफ 37 डिग्रीज.
4: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ie.

0: 101.2 The Beat of Bollywood. Great news, Ajman! A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market. More choices, more savings, more reasons to shop.
1: Taqat ka tarkaab with Dabur Shilajit.
2: बिजी दिन हो या फिर टफ शेड्यूल, अपनी एनर्जी और एक्टिव लाइफस्टाइल का ध्यान रखना जरूरी है. डाबर शिलाजीत के साथ रहिए रेडी फॉर योर एवरीडे चैलेंजेस.
1: ताकत का तड़का विद डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: लिसन टू हर एवरीडे.
3: मोगेम्बो खुश हुआ.
4: इट्स टाइम फॉर द कैरियोकी एंड काफी थके से हैं सर. क्या हुआ?
5: जी हेलो.
4: नहीं हेलो तो है, बट हुआ क्या है आपको?
5: कुछ भी नहीं. ऑफिस से निकला, थोड़ा टाइट हूँ.
4: टाइट हो?
5: मेरा नाम हिशाम है.
4: हिशाम, टाइट क्यों हो?
5: सेल्स में हो ना, नेचुरली गाड़ी टाइप. सर उधर इधर मारे मारे फिरना है ऑर्डर.
4: ओहो, कैसा चल रहा है? टारगेट हुआ नहीं हुआ?
5: नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है.
4: बस सर, टारगेट होते रहना चाहिए. आप गाना वाना गाते हो? नहीं गाते हो?
5: नहीं, मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ. बस वो गाना बहुत पसंद है.
4: तो सर क्यों ऐसा कर रहे हो कि यहाँ से मुझे भी फिर भगा दिया जाए?
5: ठीक है.
0: कारियोगी.
5: मुझे रात दिन मुझे
4: सॉरी आप
5: गाना याद था, लेकिन आप ये फर्स्ट टाइम वाला बताती नहीं हो ये तुम्हारी खता है. क्या मुझे
4: काफी टाइट हो सर. आज आप बहुत ज्यादा टाइट हो. आप बाकी पब्लिक भी टाइट हो रही है.
5: मूड खराब कर दिया.
4: नहीं नहीं,
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: Morning, it's 10:21 on the clock and let's start with the capital, Abu Dhabi. आपको जो ट्रैफिक था वो काफी कम हो चुका है मफलक इंडस्ट्रियल पर गोइंग टूवर्ड्स बनियास हेडिंग नॉर्थ ऑन E11. फाइंड बस अब 2 से 3 मिनट का बिल्डअप आउट देयर. चलते हैं दुबई शारजा की ओर, हेडिंग साउथ गोइंग टूवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा 311 E11 हेडिंग साउथ. यू विल फाइंड अबाउट 5 to 6 मिनट्स का डिले रह गया इन बोथ दीज आर्टरीज. Another interchange one pe hai, then going towards Dera from Sharjah also you find a bit of congestion. Beirut Street E62 is still a bit congested. The good news is ke 66 pe jo traffic tha wo chhat chuka hai and it is absolutely smooth flowing on 611 as well.
0: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, The Beat of Bollywood.

0: जान से गुजरते हैं, बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं और दिन भर प्रोटीन खाते रहते हैं यार, इन सम वे और फॉर्म, वे और फॉर्म, वे प्रोटीन, पी प्रोटीन, पता नहीं किस तरह के प्रोटीन, जस्ट फ्लाइंग ऑफ द शेल्व्स, बट नाउ साइंटिस्ट्स आर सेइंग कंप्लीटली समथिंग एल्स.
1: Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: यार एक तो ना ये साइंटिस्ट से मैं बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका हूँ. अब लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से, यू नो व्हाट साइंस इज सेइंग, रिसर्च के हिसाब से ईटिंग लेस प्रोटीन कुड मेक यू लिव लॉन्गर. या बिल्कुल सही सुना आपने, ईटिंग लेस प्रोटीन कुड मेक यू लिव लॉन्गर. तो भाई इतने टाइप से हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे? जिस भी जिम ट्रेनर को पूछो कि सर क्या खाऊं मैं, किसी भी डाइट प्लान में नंबर वन आइटम वुड बी प्रोटीन, बट नाउ रिसर्च इज सेइंग समथिंग एल्स. भाई हमारे पुरखे बिल्कुल सही कहते थे, टेंशन मत लो, अच्छे से जम के खाना खाओ. देयर इज अ बिट ऑफ अ कैवियट हियर बाय द वे, कि अगर आप एक एथलीट हैं, इफ यू रेगुलरली गो टू द जिम एंड यू नो वर्कआउट हार्ड, ट्रेन हार्ड, देन प्रोटीन लेना सही है, राइट? क्योंकि वो सेलुलर जो रिप्लेसमेंट है उसके काम आता है. लेकिन अगर आप नहीं जा रहे जिम, इफ यू नॉट एन एथलीट, अगर आप बैठे बैठे काम कर रहे पूरे पूरे पूरे दिन, देन अगर आपको लगता है कि मैं प्रोटीन सप्लीमेंट लेकर मेरे को मुझे कम भूख लगेगी, दैट इज अ मिस्टेक, क्योंकि दैट कैन कॉज मॉलिक्यूलर डैमेज. सो बीवेयर.
2: जिन्नी सोनी लगदी है मैनू किसे होर ना लगे.
0: दिल वाले चोर कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल फ्रॉम पति पत्नी और वो दो. Yeah, even I'm as confused as you are. ये सब confusion छोड़ो यार, मैं बात बोलूँ आपको, जाकर Papa John's का pizza order करो. Biggest pizza deal of the season is here. आज आखिरी दिन है 4th of August. Papa John का mega week चल रहा है, valid for one full week. शुरू हो गया था 29th of July को. Buy one large or medium pizza, get one free of the same value. Double the pizza, double the value. It's perfect for sharing with friends and family. The offers available through the Papa John's app. Plus dine-in and takeaway. Limited time promotion, so don't miss out. Download the Papa John's app and grab the deal today. Better ingredients, better pizza, Papa John's.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन, आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
1: द बिग मिक्स वीकडेज 1 to 5 PM ओनली ऑन बिग 106.2, ब्रॉट टू यू बाय इंश्योरेंस मार्केट .ae। Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसलखोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लड़ेगा?
3: यूं ही, यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच? पाँच।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 p.m. and Sunday 10 a.m. to 12 p.m. only on Big 106.2. The beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 96.2 The Beat of Bollywood. आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
1: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड आफ्टरनून 1:06।
1: Bollywood.

0: 92. The Beat of Bollywood.
1: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत।
2: आज का पावर टिप, अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से ही बनता है स्ट्रॉन्ग डे।
6: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स 41 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज अक्रॉस द यूएई, ह्यूमिडिटी एट 50-55%, एक्सपेक्ट इट टू गो अप टू 45 डिग्री सेल्सियस टुडे।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 बिग 106.2

0: ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: Aapki jeet, Dabur Shilajit, Ayurvedic supplement for men. Consult your doctor before taking medicines and pharmaceutical products.
1: Listen to her every day.
7: Mugembo, khush hua.
2: It's time for the karaoke and kafi thake se hain sir. Kya hua?
8: Ji, hello.
2: Nee, hello to hai, but hua kya hai aapko?
8: Kuch bhi nahi. Office se nikla, thoda tight
2: ho. Tight ho?
8: Mera naam Hisham hai.
2: Hisham, tight kyun ho?
8: Sales mein ho na, naturally gaadi type. सर उधर इधर मारे मारे फिरना है ऑर्डर।
2: ओहो, कैसा चल रहा है? टारगेट हुआ नहीं हुआ?
8: नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है।
2: बस सर, टारगेट होते रहना चाहिए। आप गाना वाना गाते हो? नहीं गाते हो?
8: नहीं, मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, बस वो गाना बहुत पसंद है।
2: तो सर क्यों ऐसा कर रहे हो कि यहाँ से मुझे भी फिर भगा दिया जाए?
8: ठीक है। मुझे रात दिन मुझे याद था, लेकिन आप ये फर्स्ट टाइम वाला बताती नहीं हो, ये तुम्हारी खता है, करूं क्या मुझे।
2: काफी टाइट हो सर, आज आप बहुत ज्यादा टाइट हो, आपके बाकी पब्लिक भी टाइट हो रही है।
8: मूड खराब कर दिया।
2: नहीं नहीं,
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक। 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
9: थोड़ा बहुत अभी भी साउथ बाउंड ट्रैफिक आपको मिलेगा अलनाथ इंटरचेंज 1 पर E11, देन देयर इज अ बिट ऑफ ट्रैफिक हेडिंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट एरिया D89 पर, यू फाइंड बिट ऑफ वेस्ट बाउंड ट्रैफिक ऑल्सो। 44 अलखेल रोड इज जस्ट अ बिट बिजी गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस वे एंड बियॉन्ड टुवर्ड्स अलकूज 4th। इन केस यू स्पॉट समथिंग, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर।
1: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. This is The Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Big 106.2, but this is the Big Mix with me, Sid. Very special day for all music fans aaj, not just Bollywood, but music fans in general. Kishore Kumar ki birth anniversary hai. I mean, the legend, one of the greatest of all time. Yeah, I mean, there is not a single person, I think, a Desi person who's not a Kishore Kumar fan. Now, Anupam Kher is also one such Kishore Kumar fan. And here he is talking about his favorite Kishore Kumar moment related to his favorite Kishore Kumar song. Suniye zara.
2: Gana un dino hota tha, zindagi ki yahi reet hai, haar ke baad jeet tha. Dada ne gana shuru kiya, zindagi ki yahi reet hai. Maine kaha, mera favorite gana. Next line gaayi to kuch soda.
3: Change
2: karke gaaye. Thode aisa kuch kiya. मैंने कहा यार, ये तो ट्यून तो कुछ और है, शाम को अगर गाएंगे तो सब लोगों को पता लग जाएगा कि
3: गलत गा।
2: मेरे मुंह से मुश्किल से मैं कह रहा हूँ दादा दादा दादा, तो दादा रुक गए। हाँ बोलिए, कौन आप कौन? मैंने कहा अनुपम खेर। सब कुछ और निकला, मैंने कहा दादा आप गलत गा रहे हो, किशोर कुमार को मैं बोल रहा हूँ आप गलत गा रहे हो, मैं उनको गा के सुना रहा हूँ। मैंने कहा दादा ओरिजिनल में आपने गाया जिंदगी की यही रीत। अच्छा जिंदगी की है? और ओरिजिनल अब कैसे गा रहा हूँ? तो मैंने कहा अब आप गा रहे हो जिंदगी की समथिंग। अच्छा अच्छा ओरिजिनल किसने गाया? मैंने कहा आपने। और ये कौन गा रहा? आप, आपके बाप का क्या जाए?
1: That is such a Kishore Kumar moment out there. Anupam Kher talking about his favorite song and lucky enough to actually meet the legend Kishore Kumar. Lekin jab wo mile to unhone Kishore Kumar ko keh diya ki aap galat ga rahe ho. I mean, gustakh Anupam Kher ka ye favorite gana. Chalo play karte hain. It's one of my favorite songs as well. Zindagi ki yahi reet hai, haar ke baad jeet hai. In case there's a Kishore Kumar song that is your favorite, you can always WhatsApp me 054-309-1062. This is the Big Mix with me, Sid.

Big 106.2, but this is the Big Mix with me, Sid. Of course, we're celebrating the one and only, the legendary Kishore Kumar's birth anniversary today, the 4th of August. And there's so much legend around the legend. मतलब, it is not an ordinary life at all, right? जितने भी किस्से कहानियां इनके बारे में और किसी के बारे में नहीं है यार. I mean, for example, things that he'd named the trees at home, and he used to go and talk to the trees. He would never trust producers, you know, insist on payment in advance. And एक बार एक producer ने इनको पूरे पैसे नहीं दिए, आधे दिए, तो फिर ये पूरे आधे हिस्से के बाल मुंडवा कर वो पहुंच गए कि जब तक तुम मुझे पूरे पैसे नहीं दोगे मैं ऐसे ही दिखूंगा. एंड ही वॉज ऑब्वियसली एक्टिंग इन दैट फिल्म, नॉट जस्ट सिंगिंग. बट या, वॉट अबाउट अ फिल्म बेस्ड ऑन किशोर कुमार? कितने टाइम से हम सुन रहे हैं कि देयर इज अ बायोपिक इन द मेकिंग, एंड कभी रणवीर सिंह का नाम आ जाता है तो कभी रणबीर कपूर का. अनुराग बासु हैज बीन एक्चुअली नर्चरिंग ड्रीम्स ऑफ ब्रिंगिंग किशोर कुमार्स लाइफ टू द बिग स्क्रीन एक डेकेड से, लाइक 10 साल से ये चल रहा है. एंड रिसेंट बज वॉज अराउंड आमिर खान के, एक तरफ जहां पर रणबीर कपूर निकले तो आमिर खान हैज स्टेप्ड अप. जो जब रिसेंटली, आई थिंक लास्ट मंथ, ही वॉज आस्ड अबाउट दिस प्रोजेक्ट, ही सेड के नहीं, आई मीन आई कांट कॉमेंट, आई डोंट थिंक इट इज अप्रोप्रिएट फॉर मी to say anything on this project. Or jab koi aisa kehta hai, which means that, you know, there is something or the other, there is some smoke out there. And jab unse pucha gaya ki yaar Ranbir Kapoor to aapke dost hain, why did he kind of exit the project, he said nahi wo dost hai, bahut acha, he kind of spoils me also, ye dekho mere liye naye joote usne bheje hain. Ye kya, kis tarah ka kya chal raha hai bhai, main filmon ke bare mein aapse pooch rahe hain, hum log aap jooton ke bare mein baat de rahe ho yaar. So but anyhow, so if there is one person, one celebrity jiske upar there should be a biopic, it is Kishore Kumar. On that hope that we see that biopic sees the day of light. Here's one of the most unanticipated, matlab agar aap sare ke sare gaane Kishore Kumar ke le aur kahe ki kaun se gaane ka remix is the most unanticipated, this is that song. It's called Aankhe Char from Tu Ya Main. This is the Big Mix with me, Sid.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 2:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: This is the Big Mix with me, Sid. और यार रोज कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिलता है अराउंड रामायण नमित मल्होत्रा की, वो मतलब 4,000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है, ऑफ कोर्स बनता है दिवाली तक आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा इन द प्री रन टू द रिलीज ऑफ दैट फिल्म, द पार्ट

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग मिक्स ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae
2: insurancemarket.ae
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: Good afternoon. There's a bit of congestion जो कि जमा हो गया at Dubai Lane Road 66 पर जदाफ की तरफ जाता हुआ traffic आपको मिलने वाला है 4 से 5 मिनट की देर यहाँ पर है and then there are the usual suspects 311 पर अभी भी थोड़ा बहुत southbound traffic 3-4 मिनट का आपको मिलेगा festival city के आसपास Ribat Street पे थोड़ा बहुत traffic मैं देख पा रहा हूँ and then a bit of congestion heading towards Umm Sikkim from Media City already on Sheikh Zayed Road. In case you spot something give me a call 800-1062 पर
1: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2 6.2

0: Okay.
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे. बिग टाइम चेक.
2: गुड आफ्टरनून. 3:06.
3: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

Big 106.2 पर दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिटी टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंसेस इन बॉलीवुड हिस्ट्री जब रामायण पे फिल्म बनने वाली थी लेकिन बनते बनते रह गई, नहीं बनी. राजकुमार संतोषी का प्रोजेक्ट इज अप नेक्स्ट. नाउ ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर्स एवर इन बॉलीवुड. इट वॉज ऑन अ डेयर आई थिंक फ्रॉम श्याम बेनेगल, जब उन्होंने कहा श्याम बेनेगल ने कि यार सीरियस फिल्में तो तुम अच्छी बनाते ही हो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक कॉमेडी फिल्म बना के दिखाओ तो मैं मानूंगा. सो बेस्ड ऑन दैट डेयर, एट लीस्ट दैट वॉट द अर्बन लेजेंड इज, राजकुमार संतोषी टुक अप दैट डेयर एंड एंडेड अप मेकिंग द बिगेस्ट कल्ट क्लासिक कॉमेडी ऑफ ऑल टाइम विच इज अंदाज अपना अपना बना दी भाई, मतलब जस्ट ऑन अ डेयर. सो ही वॉज गोना टेक a really large scale project, very ambitious project based on the Ramayan, and it was 2006-2008 wala time. He featured Ajay Devgan as Lord Ram, Kajol as Sita Maiya, Ritesh Deshmukh as Lakshman, and Prakash Raj as Ravan. Another very strong cast here. Prakash Raj as Ravan has got that ring to it. Lekin again, because of budget, because of the scale of the project and scheduling issues, the project had to be unfortunately shelved. Which is the नेक्स्ट इंस्टेंट, अगले वाले जो इंस्टेंस है ना उसके बारे में सुन के आपको मजा आ जाएगा. इट इन्वॉल्व्स दिस एक्टर हुज इन द न्यूज टुडे फॉर शेडिंग 16 kg ऑफ वेट. 16 kg वजन जिस एक्टर ने लूज किया. ही वॉज गोइंग टू स्टार इन अ रामायण प्रोजेक्ट दैट हैड टू बी शेल्ड. कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल राइट हियर ऑन द बिग मिक्स विद मी सिड.

0: Hollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamu alaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
6: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: Listen to her every day.
7: Mugembo, khush hua.
2: It's time for the karaoke and काफी थके से हैं सर. क्या हुआ?
8: नहीं हेलो.
2: नहीं हेलो तो है, but हुआ क्या है आपको?
8: कुछ भी नहीं. ऑफिस से निकला, थोड़ा टाइट हूँ.
2: टाइट हो?
8: मेरा नाम हिशाम है.
2: हिशाम, टाइट क्यों हो?
8: सेल्स में हो ना, नेचुरली गाड़ी ड्राइव. सर उधर इधर मारे मारे फिरना है ऑर्डर.
2: ओहो, कैसा चल रहा है? टारगेट हुआ नहीं हुआ?
8: नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है.
2: बस सर, टारगेट होते रहना चाहिए. आप गाना वाना गाते हो? नहीं गाते हो?
8: नहीं, मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ. बस वो गाना बहुत पसंद है.
2: तो सर क्यों ऐसा कर रहे हो कि यहाँ से मुझे भी फिर भगा दिया जाए?
8: ठीक है.
0: Karaoke.
8: मुझे रात दिन मुझे याद था, लेकिन आप ये फर्स्ट टाइम वाला बताती नहीं हो, ये तुम्हारी खता है, करूं क्या मुझे.
2: काफी टाइट हो सर. आज आप बहुत ज्यादा टाइट हो. आप बाकी पब्लिक भी टाइट हो रही है.
8: आपका मूड खराब कर दिया.
2: नहीं नहीं,
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. This is The Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood. This is The Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
11: It is on an average 43 degrees Celsius across the UAE. It's forecast to hit 46 degrees. Abu Dhabi mein there's a weather alert, rain, hail and 50 kilometers per hour ki winds wahan pe aap expect kar sakte hain. Right now the humidity is around 55 to 60%. This is the Big Mix with me, Sid.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

93.2, The Beat of Bollywood. Big 106.2. That's My Song by E. And.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, GoChat के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। Big.

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। बिग टाइम चेक,
2: गुड आफ्टरनून, 4:06।
3: Bollywood.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: गुड आफ्टरनून। टेम्परेचर्स हावरिंग अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज अक्रॉस द यूएई। इट्स सेट टू हिट 46 डिग्री सेल्सियस टुडे, दैट्स व्हाट द प्रेडिक्शन इज। एंड अबू धाबी में देयर इज अ वेदर अलर्ट, रेन हेल, यू कैन एक्सपेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। सो ड्राइव सेफली, पर्टिकुलरली आज आपको ह्यूमिडिटी मिलेगी अराउंड 50-55% अक्रॉस द यूएई।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

This is The Big Mix right here on Big 106.2, The Beat of Bollywood. And what is The Beat of Bollywood today, this afternoon? People are talking about Salman Khan. I mean, Salman Khan ne wazan ghataya, to kyun ghataya? Buddhu barabar se, everything is fine, Salman bhai. I hope he's saying, yeah, it is all on purpose. Yaar, aisa nahi hai ki kuch ho gaya hai mujhe. He is actually 16 kilos down because of his next role. I've never heard of Salman Khan doing method acting. It's usually ke a character is written for Salman Khan, right? It's like, it's not like Salman Khan has to get into character. The character has to get into Salman Khan, if that makes any sense. But for the first time, aisi khabar main sun raha hu ki 16 kg kam kiya to ek role ke liye, the next film that he's doing opposite Nayanthara, इसके लिए उन्होंने 16 केजी वजन कम किया. कम वजन वाले सलमान खान ही दिखे थे रिसेंटली इन दैट रियलिटी शो व्हेन ही वाज व्हेन ही मेड दैट अपीयरेंसेस. सोहेल खान वाज देयर एंड सोहेल खान इज लॉट लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट एज वेल. यार, सो द एंटायर खानदान ने साथ मिलकर वजन घटाने का डिसीजन ले लिया है, ऐसा लग रहा है यार. बट लॉट्स मोर कमिंग अप ऑन द शो, इंक्लूडिंग लव एंड वॉर, SLB, संजय लीला भंसाली की ये जो फिल्म है, ये कब बनेगी भाई, कब खत्म होने वाली है? देयर इज एन अपडेट अबाउट दैट कमिंग अप राइट हियर ऑन द बिग मिक्स विद मी सिड.

0: Tışkan. Gel radyo. Şahane ne baba? Aptep. Baburav dan patrav aptep. Bol.
1: Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Wow, your hair color looks stunning.
3: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
2: Yeah, right.
3: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
2: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
2: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
4: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत, डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
1: This is The Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Self Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Big 106.2 पर this is the big mix. It is Kishore Kumar's birth anniversary today. The legend 4th of August and yeah, they cannot be a Bollywood music industry imaginable without the timeless voice of Kishore Kumar. Now, बहुत सालों से, इनफैक्ट फॉर एन एंटायर डेकेड, अनुराग बासु इज वांटेड टू डू अ बायोपिक ऑन किशोर कुमार, लेकिन बहुत सारे लोग आके चले गए. कभी रणवीर सिंह का नाम भी आ गया था. रणबीर कपूर वॉज श्योर शॉट कन्फर्म्ड ऑलमोस्ट टू प्ले किशोर कुमार, बट द लेटेस्ट इज दैट ही इज ऑल्सो आउट ऑफ द प्रोजेक्ट. आमिर खान हैज स्टेप्ड इन, बट लास्ट मंथ इटसेल्फ जब उनसे पूछा गया अनुराग बासु से कि भाई दादा बताओ क्या है, व्हाट इज द लेटेस्ट, ही सेज कि नहीं, इट्स नॉट करेक्ट फॉर मी एयर कोट्स टू मेंशन एनीथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट. रणबीर कपूर इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, उसने अभी अभी मेरे को नए नए जूते भेजे हैं. TMI दादा, heard of too much information, but yeah, talking about Ranbir Kapoor, one film that he is definitely doing is SLB, Sanjay Leela Bhansali ki Love and War, also stars

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। 106.2

0: 92 The Beat of Bollywood. Great news, Ajman. A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward, plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Missed your morning buzz?
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.
0: ये सुनो.
3: I'm in procurement and logistics. Thanks to the world का जो भी scene चल रहा है, सब चीजें late हो रही है. रोज गाली खाते हैं और अचानक से 4 महीने बाद 4 कंटेनर आ जाते हैं तो वेयरहाउस बढ़ जाता है. तो हम तो रोज ही झगड़े और गाली को लॉन्च कर रहे हैं.
4: क्या बात है. वायरस से डर नहीं लगता साहब, कंटेनर से डर लगता है.
3: आई स्वेयर मैं अभी भी जाके झगड़ा करूंगी एक कंटेनर के लिए आपके फोन के बाद.
4: The silver lining to all of your, you know, container wale is that aaj Anisha ki awaaz thodi si nasaaz hai and that is why jab wo chillayegi to usually jo effect hota hai wo nahi hoga because thodi tabiyat kharab hai Anisha. So
3: yes, that is for sure. To bechare roz daat khate mujhse.
4: Anisha, matlab bahut dar lag raha hai mere ko yaar, bahut hi dar lag raha hai aapse mere ko.
3: क्योंकि मुझे मेरी लेबनीज बहुत से डर लगता है.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.
4: गुड इवनिंग. प्रॉपर जमघट शुरू हो गया ट्रैफिक का. अब नाउ इन द नॉर्थ डायरेक्शन बोथ दी आर्टरीज 11 311 पर एज यूजुअल यू विल फाइंड ट्रैफिक हेडिंग टुवर्ड्स शारजा फ्रॉम दुबई. क्या जल्दी छुट्टी हो गई क्या आपकी आज के दिन. देयर इज आल्सो बिट ऑफ नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक एट 44 अलखेल रोड पर स्पेशली गोइंग टुवर्ड्स रसल खोर एंड देन शेख जायद रोड. हाउ कैन दैट बी फार बिहाइंड. यू विल फाइंड ट्रैफिक मीडिया सिटी गोइंग टुवर्ड्स उम सिक्किम. यहां पर आपको मिलेगी 4 से 5 मिनट की देर. इन केस यू स्पॉट समथिंग गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक. गुड इवनिंग. द टाइम राइट नाउ 5:07.
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन, आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
3: नमस्ते,
4: ओला,
3: अस्सलाम वालेकुम,
5: बोंजूर,
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
1: Early in the morning, the Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color.
7: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. InsuranceMarket.ae.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: गाड़ी में मेरे 47 डिग्रीज दिखाता है, गूगल दिखाता है 39, एक्सेसिव हीट, बड़ी गर्म हवाएं चल रही है, लो जाएगा अराउंड 37, वेरी वेरी हॉट टुडे, ह्यूमिडिटी ठीक ठाक है, इट्स 48% पर।
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, यह है Big Thrill Mansi. Tuesday की शाम है. Wednesday से जो है वो weekend वाले mood में हम आएंगे. फिलहाल it's time for the karaoke. While you're stuck in traffic every single evening, a platform सभी bathroom singers के लिए कि अपने talent को bathroom तक मत रखो. I'm giving you a platform. Host your own concert. Well, today happens to be Kishore Da's birth anniversary. उन्होंने कमाल गाने गाए हैं. He's very popular with the karaoke also. उनके बहुत सारे गानों पे लोग कैरियोके करते हैं. तो आज शाम इफ यू आर अ फैन ऑफ किशोर दा, व्हिच आई एम श्योर यू आर, देन ये गाना आपके लिए बहुत आसान होने वाला है.
1: कैरियोके

0: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
3: Ready, throw!
4: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
2: The Big Thrill on Big 106.2. Brought to you by Dabur Shilajit. Aapki jeet, Dabur Shilajit.
5: Hey, jaldi hata, tera khatana. Chal hata.
2: Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
6: जिस रोड से मुझे आज भी डर लगता है, वेरी वेरी बिग ट्रैफिक है ऐसा स्ट्रीट पर, इट इज पैक्ड राइट नाउ, जेवीसी जेवीटी ऑल द वे अंटिल स्पोर्ट्स सिटी, ऑल्सो स्लो मूविंग ट्रैफिक, 22 टू 25 मिनट डिले फिर ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद मरिफ टू मुहेसना, देयर इज अ 20 मिनट डिले एट द मोमेंट शेख जायद पर, स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा नियर करामा, मनकूल, ऊद मेहता, फहीदी इज पैक्ड, इट्स बम्पर टू बम्पर सिचुएशन, एंड ऑफकोर्स अगर आप गुरेर के आस पास हैं वहां भी काफी स्लो मूविंग ट्रैफिक है। इसके अलावा आई सी पैची ट्रैफिक एट द मोमेंट Marina, if you're going towards JBR, anything else you'd like to report, let me know, 800-1062 par.
7: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
8: Share market itna gehra kuwa hai, jo pure desh ki paise ki pyaas bujha sakta hai. Aur main is kuwa mein dubki lagana chahta hu. Bahut gehra jana chahta hu. Dekh, main history banana chahta hu. और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे।
2: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. We are karaokeing here every single evening to unwind, to relax after a long day of CCing a lot of emails. This is how we relax. Hum gana gaate hain. Ab gana aaye ya na aaye, gana chahiye. Logon ko acha lage ya na lage, it's not your problem. Aapko gana acha lagna chahiye. Filhal, Balveer, good evening.
2: Good evening, Mansi ji.
1: Kaise hain Balveer ji aap?
2: बहुत बढ़िया, आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है.
1: सो क्यूट. क्या करते हैं बलबीर आप?
2: मैं पहले शिप में कैप्टन था, सही करता था ऑल अराउंड वर्क. अब शिप को इंस्पेक्ट करता हूँ.
1: आई लाइक मेन इन यूनिफॉर्म, एंड स्पेशली वो जो शिपीज की यूनिफॉर्म होती है बड़ी कूल होती है.
2: तो रियली,
1: या आई नो देयर इज अ थिंग अबाउट मेन इन यूनिफॉर्म, अ लॉट ऑफ गर्ल्स रियली रियली फाइंड देम अट्रैक्टिव. तो आपको तो काफी फीमेल अटेंशन मिलता होगा. हैं
2: वैसे भी मेरे पास कुछ और स्किल्स हैं जिससे काफी अटेंशन मिलता है.
1: प्लीज यहाँ मत बताना, मतलब दिस इज अ फैमिली.
2: नहीं नहीं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ. जेन्युइनली आई नो सो मेनी लैंग्वेजेस, लाइक आई कैन स्पीक मलयालम फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक चाइनीज फ्लुएंटली, लाइक और मैं गिटार भी बजाता हूँ,
1: मतलब
2: थोड़ा बहुत गाना वाना भी गाता हूँ.
1: आप पूरा पैकेज और हो, बहुत दिल तोड़े हैं आपने, समझ गई हूं.
2: मैं राइडिंग वगैरह भी करता था.
1: सर मैं आगे से बोल रही हूँ कि आपने बहुत दिल तोड़े हैं, मैं पहले ही समझ गई. वो गिटार जब तक आया मैं समझ गई थी. तो आप गिटार बजाते हैं, तो आई एम श्योर आप गाना भी गाते होंगे.
2: जी जी, कोशिश करता हूँ अपने तरफ से बेस्ट करने का. बाकी तो क्या है कि इट इज अ गुड स्ट्रेस बस्टर, एंड टू कीप यू सेन इन दिस यू नो डिफिकल्ट वर्ल्ड, इन दिस स्ट्रेसफुल वर्ल्ड.
1: सर आप तो मुझे लग रहा है लड़कियों को स्ट्रेस देते होंगे. आपको क्या स्ट्रेस है फिलहाल? बलबीर, लेट्स सी के आप आज शाम कैसा गाते हैं. इट्स किशोर दास बर्थ एनिवर्सरी आल्सो, आप जो है उन्हीं का गाना गाएंगे. तो हियर्स योर ट्रैक.
0: Karaoke.
1: हां जी.
2: ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए. ओ मेरे दिल के चैन, मेरे दिल को दुआ कीजिए.
1: यू आर अ सिंगर, यू आर अ सिंगर, मीन्स यू नो दैट. बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया. अच्छा, सबसे ज्यादा चैन किसने चुराया है जिंदगी में आजकल आपका?
2: मेरा तो कोई ऐसा चुराया नहीं, मैं ही चुरा रहा हूँ.
1: ये देखो, ये देखो. Man who's flexing on being a red flag. कलयुग है बेटा, ये कलयुग है. बट बलबीर आपने बहुत कमाल गाया, एंड आई थिंक यू आर अ प्रोफेशनल karaoke सिंगर. आपने माहौल बना दिया है, तो थैंक यू सो मच, एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट ड्राइव बैक होम.
2: थैंक यू, थैंक यू,
1: बाय. दिस इज व्हाट वी डू. हम सिर्फ यहाँ गाते हैं, रिलैक्स करते हैं, गाना आए ना आए. अगर आप शौक रखते हैं गाने का, ये गाना आपको पता है, देन 800-1062 इज द नंबर.

0: बाय. दिस इज व्हाट वी डू. हम सिर्फ यहाँ गाते हैं, रिलैक्स करते हैं. गाना आए ना आए, अगर आप शौक रखते हैं गाने का, ये गाना आपको पता है, देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल.
1: Karaoke. Beat 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: New AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: काफी भारी मात्रा में किशोरदा के फैंस यहाँ पे करना चाहते हैं कारियोकी. वेल, गाना आया ना आया, अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है, दिस इज योर प्लेटफॉर्म. यू कैन ऑल्सो रजिस्टर व्हाट्सएप करके 0543091062 पर. कमिंग अप, धुरंधर द रिवेंज से इसी के साथ वी गॉट दिलजीत अनलका याग्निक. This one from the crew. Today we're also celebrating Kishore Da's birth anniversary, who is very very popular when it comes to karaoke. तो अगर आप भी Kishore Da के गाने गाते हैं तो बस अपना talent गाड़ी तक बाथरूम तक मत रखो. Host your own concert, giving you that platform. Don't worry कि गाना आता है नहीं आता है, अच्छा होगा नहीं होगा, reality show नहीं है, बस हम माहौल बनाने के लिए गाते हैं. आप गाना चाहते हैं 800-1062 पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं.
0: Big 106.2.

0: Radio.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: Sia, self-drive's new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत, डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: All right, patchy traffic at the moment. अगर आप जाने towards JVC, JVT, 15 से 18 मिनट का डिले है ऐसा स्ट्रीट पर. There's heavy traffic on the Sheikh Mohammed bin Zayed. It is kind of packed at the moment. अगर आप अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हैं, also slow moving near Dubai Creek Harbour, Nadal Hammer, Festival City, सब packed है. Sheikh Zayed पर फिलहाल 22 मिनट का डिले दिखा रहा है. उद मेहता करामा मनकूल, फहीदी अगेन इट्स बम्पर टू बम्पर. एनीथिंग एल्स यू'd लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर.
0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
6: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना. जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया.
0: Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, ये है Big Thrill Mansi and we are karaokeing party today while you're stuck in traffic. हम यहाँ पे गाने गाते हैं. Professionally आप गाना गाओ या ना गाओ, अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है, मजा आता है, you feel relaxed, this is it. This is what we do every single evening. वकास की बात सुनिए. मैंने पूछा आज किशोर दा की बर्थ एनिवर्सरी, आप उनके फैन हैं, कहते नहीं बलबीर ने गाया तो मुझे लगा कि मैं भी गाता हूँ, मजा आया है ना.
2: हाँ बिल्कुल ऐसा ही है.
1: तो आप वैसे गाते हो कि ये अपना डेब्यू आप यहाँ करने वाले हो?
2: मैं वैसे ही कभी गुनगुना लेता हूँ, दिल करता है तो.
1: गुनगुना लेते हो? कहाँ कहाँ गुनगुनाते हो?
2: ऐसे ही चलते फिरते, कभी गाड़ी में, कभी नहाते हुए, कभी घूमते फिरते.
1: बहुत बढ़िया. वैसे करते क्या है वकास आप?
2: मैं जो हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का काम करता हूँ. अभी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में,
1: अभी सबसे महंगा फ्रूट कौन सा चल रहा है मार्केट में?
2: अभी सबसे महंगे इस वक्त एप्पल्स चल रहे हैं. एप्पल्स बहुत शॉर्ट है, न्यूजीलैंड से आ रहे हैं और अराउंड 18 kg, 175-200 दिरहम तक चल रहा है. पहले 110-120 का मिलता था.
1: तो एप्पल के दाम बढ़ गए हैं. फिलहाल यहाँ पर हम गाना गाने वाले हैं एंड किशोर दा की बर्थ एनिवर्सरी. गाना आपको ऑलरेडी पता है, सो लेट्स सी कि वकास जो चलते फिरते गुनगुनाते हैं यहाँ पे क्या कमाल करते हैं. देखो अच्छा गाना है वकास, वरना आप ही के फ्रूट वेजिटेबल मार्केट से लोग टमाटर खरीदेंगे, आगे आप जानते हो.
2: Karaoke.
1: शुरू हो जाइए.
2: ओ मेरे

0: किचन। मुझे तो आगे
1: यार किसके साथ है, आप किससे पूछ रहे हो?
0: यार ये मेरी वाइफ है, साथ बैठी है, उसको भी नहीं आता।
1: नहीं बहुत गा दिया आपने, अब आप बीवी को सुनाओ गाड़ी में। आप तो कल जाके वहाँ पे एप्पल आम बेच दोगे, मेरी दुकान तो सही चलनी चाहिए।
0: नहीं मेरा तो ऑफ हो गया है और मॉर्निंग में ही काम होता है, दोपहर में तो ऑफ हो जाता है। अभी हम वैसे ही निकले थे काम से, रेडियो पे आपका आ रहा था, मेरी वाइफ ने बोला कॉल करो।
1: वेरी नाइस। लास्ट टाइम वाइफ के लिए गाना कब गाया था आपने, कि रोज गाते हो?
0: गाने तो इनके लिए नहीं गाते, वैसे कवालियां गा लेता हूँ बातों बातों।
1: अच्छा, इनके लिए गाने क्यों नहीं गाते हो?
0: वो इनको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और मुझे भी असल में जबान पे चढ़ते नहीं है गाने इतनी आसानी से।
1: यही होता है। कितने साल हो गए शादी को?
0: 6 महीने हुए।
1: फिर भी नहीं गाना डेडिकेट कर पा रहे हो यार, हद है। 6 महीने की शादी के बाद भी नहीं आप कर पा रहे हो। चलो यू गाइस हैव अ ग्रेट ड्राइव बैक होम। अब इसी मेरे कॉल रखने के बाद वो क्या बोलेंगे वो मुझे बाद में बताना, ठीक है? चलो
0: बाय, टेक केयर।

0: जाए।
1: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
2: देख

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, यह है Big Thrill and of course this hour of the show we play this fun game, it's called the 5-second rule. मैं हर बार बताती हूँ, it sounds easy. गाड़ी में बैठे बैठे कोई और खेलता है तो आपको भी बहुत easy लगता है, बट इतना आसान है नहीं. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ categories, तीन चीजें बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर. If you want to try, call करो 800-1062 पे. If you are a fellow millennial, then you're in for a treat. Imran Khan, if you love जाने तू या जाने ना. Break के बाद I Hate Love Stories is making a comeback with a rom-com on OTT. आपको मैं सारी डिटेल्स देती हूँ, बट सबसे पहले we've got this one from 3-2 right here on Big 106.2 with the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड इवनिंग, टाइम राइट नाउ 6:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening. Yeah, Big Thrill. They're playing the 5-second rule. We've got Mangesh, I think, who's very, very tired in the traffic. Hi, Mangesh. Good evening.
3: Hi, Mansi. Not so tired. I was tired, but after talking to you, of course.
2: ये आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती है बंदों की. मतलब अपनी वाली की तारीफ नहीं करेंगे लेकिन दूसरे की बहुत करेंगे, है ना? मंगेश, क्या करते हो आप?
3: मैं डेंटिस्ट हूँ.
2: ओह माय गॉड, डॉक्टर, वेरी नाइस. मेरी ना वो आ रही है अकलदाड़. तो अच्छा है आपने फोन कर दिया, बहुत लेट आ रही है. मुझे आपसे एज अ डेंटिस्ट पूछना है इसके बाद क्या मैं सही डिसीजन लूंगी लाइफ में, क्योंकि अकलदाड़ आ रही है. मैं सच्ची पूछ रही हूँ यार, आपको मजाक लग रहा है?
3: नहीं नहीं, आपकी तो आ गई होगी काफी पहले.
2: देखो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, आई विल नॉट चेंज दैट भ्रम. बट मंगेश विल प्ले द 5-second रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें बतानी है फटाफट 5 second के अंदर. ऑल द बेस्ट.
1: 5-second रूल.
4: ओह यस.
2: तीन ख्याल जो आपके मन में आते हैं जब आप लोगों के दांत चेक करते हैं.
3: पहला, कितना गंदा कैलकुलस है. सेकंड, यार ये मुंह साफ क्यों नहीं करता. और थर्ड, इसके घर में कोलगेट नहीं है क्या?
2: क्विकली टेल मी तीन माधुरी दीक्षित की मूवीज.
3: माधुरी दीक्षित,
2: अरे नहीं अच्छी लगती.
3: हम आपके हैं कौन?
2: खत्म हो गया. आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन?
3: अरे मेरी फेवरेट एक्ट्रेस काजोल.
2: तीन काजोल की मूवीज फटाफट.
3: दिल
2: है
3: यार, कैसा हो गया यार, काजोल की मूवी भूल गया. डीडीएलजे, सॉरी.
2: टाइम सर, आपका दांतों से ध्यान हटे तो पिक्चरों पे जाएगा ना. थ्री थिंग्स दैट यू लाई अबाउट टू योर वाइफ.
3: I am coming on time. First. Second, this month will earn so much of money. And third, मैं पक्का ट्रिप लेके जाऊंगा.
2: और ये ट्रिप के बहाने कितने साल से दे रहे हो?
3: अभी तो 5 साल हो गए शादी को. हो गया 5 साल.
2: 5 साल में कितनी ट्रिप्स कराई हैं?
3: 7-8, ज्यादा नहीं.
2: अरे यार 7-8 बहुत है यार.
3: घूमने के लिए तो घूमने के लिए तो जी रहे अपन. वो भी दुबई में रहकर घूमेंगे नहीं तो क्या ही फायदा है?
2: अरे आप ज्यादा घूमोगे, लोगों के दांत जो है वो परेशान रहेंगे ना. मेन थ्री थिंग्स दैट आर मेड आउट ऑफ मिल्क.
3: मिल्क पाउडर फॉर द बेबीज.
2: ओके,
3: देन पनीर एंड
2: टाइम खत्म.
3: श्रीखंड, यार श्रीखंड था,
2: श्रीखंड भी था, टाइम भी खत्म हो गया. तीन गाने जिनमें दिल आता है.
3: दिल तो पागल है
2: और
3: दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे.
2: तीन ऐसी चीजें मंगेश जो आप करते अगर आज आप सिंगल होते.
3: सबसे पहले तो मैं जाता देखने के लिए कतार. सेकंड, एक अच्छी ट्रिप जाता. और थर्ड, बाहर जाता.
2: मतलब घर पे नहीं रहना है. द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि घर से बाहर निकलना है बाय हुक और बाय क्रो.
1: 5-second रूल.
4: ओह यस.
2: मिस्टर डेंटिस्ट, मैं आपको बताऊं आपने कैसा खेला है ये रहने दूं.
3: बहुत बुरा.
2: Well, lovely talking to you and you have a safe drive back home. Thank you so much for calling. Bye, Mangesh. Yeah, 5-second rule. Exactly. It sounds very, very easy. इतना आसान नहीं है. आपने खेलना है तो एक ही रूल है. फोन उठाओ, मुझे कॉल करो 800-1062 पर.

0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
0: The Big Chill.
3: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
4: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत, डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: मिस्ड योर मॉर्निंग बज़?
5: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा.
0: ये सुनो,
6: आई एम इन प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स. थैंक्स टू द वर्ल्ड का जो भी सीन चल रहा है, सब चीजें लेट हो रही है. रोज गाली खाते हैं और अचानक से 4 महीने बाद 4 कंटेनर आ जाते हैं तो वेयर हाउस बढ़ जाता है. तो हम तो रोज ही झगड़े और गाली को लॉन्च कर रहे हैं.
7: क्या बात है, वायरस से डर नहीं लगता साहब, कंटेनर से डर लगता है.
6: आई स्वेयर, मैं अभी भी जाके झगड़ा करूंगी एक कंटेनर के लिए आपके फोन के बाद.
7: द सिल्वर लाइनिंग टू ऑल ऑफ योर यू नो कंटेनर वाले इज दैट आज अनीशा की आवाज थोड़ी सी नासाज है, एंड दैट इज व्हाई जब वो चिल्लाएगी तो यूजुअली जो इफेक्ट होता है वो नहीं होगा, बिकॉज़ थोड़ी तबीयत खराब है अनीशा. सो
6: यस, दैट इज फॉर श्योर. नहीं तो बेचारे रोज डांट खाते हैं मुझसे.
7: अनीशा मतलब बहुत डर लग रहा है मेरे को यार, बहुत ही डर लग रहा है आपसे मेरे को.
6: क्योंकि मुझे मेरी लेबनीज बहुत से डर लगता है.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
10: इट्स स्टिल 39, लो जाएगा अराउंड 37, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 50% पर.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: देखो 2026 कैसा भी हो, मिलेनियल्स के लिए इट इज अ टाइम टू रीलिव आर प्राइम विद इमरान हाशमी मेकिंग अ कमबैक. आवारा पंटू इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स फॉर मिलेनियल्स इन द ईयर 2026. इसी के साथ आई वाज जस्ट रीडिंग इमरान खान, इफ यू लव जाने तू या जाने ना, ब्रेक के बाद आई हेट लव स्टोरीज, गोरी तेरे प्यार में. ही इज आई थिंक द किंग ऑफ रॉन्ग कॉम, or was the king of rom-com, and he's making his comeback after 10 years with another rom-com for Netflix, jiska naam hai Adhure Hum Adhure Tum. So I can't wait, we'll get to relive our jawani ke din. Filhal, I'm going to take you to 2017. Aaj hi ke din 2017 mein Imtiaz Ali ki ye movie release hui thi. Bahut hi mixed reviews aaye the, but I kind of enjoyed the movie and I still love the music. Let me see how many of you remember Imtiaz Ali, Shah Rukh Khan, and I'll not give you more hints. Ye suno.
2: Here undi. यही हुआ था रोमांटिक एंगेजमेंट. वो यहाँ था, मैं यहाँ पे थी, शैलेश भाई, नीलेश भाई और निमिषा भाभी इधर, और वो क्या नाम है उसका?
3: नाम जरूरी है मैम? हो गया ना, आपकी सारी फैमिली यहाँ चिपक कर बैठी थी और सबके बीच में आपकी रोमांटिक एंगेजमेंट हुई, लेकिन रिंग कहाँ गिरी फिर?
2: वो याद कर रही हूँ ने, एंड नो नीड टू बी सरकास्टिक, हाँ बहुत रोमांटिक था वो. इधर से आया ऐसे ऑन हिज नीज.
1: शाहरुख खान फैंस, ये बहुत आसान होने वाला है. इम्तियाज अली फैंस, उनके लिए भी आसान होने वाला है अगर आपने गेस कर लिया है कि आज ही के दिन 2017 में ये कौन सी मूवी है जो रिलीज हुई थी. एक अंगूठी के चक्कर में पूरा यूरोप घुमा दिया था सेजल ने, अगर आपको याद आ गया. 800-1062 इज द नंबर टू डायल. फिलहाल आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट आवारापन 2.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: गुड इवनिंग, यह बिग थ्रिल, मैं हूं मानसी। एंड माहौल जो है ऐसी ही रिसर्च खराब करती है। एक रिसर्च आई है, यूएस की रिसर्च है, जो कहती है कि उन्होंने आधे एम्प्लॉयज को अप्रेजल दिया, पैसा दिया, आधे को पिज्जा खिलाया। जिनको पिज्जा खिलाया वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। ये किसी एचआर ने बनाई होगी रिसर्च। सो मोर ऑन दिस रिसर्च व्हिच आई डोंट अग्री विद एट ऑल, राइट ऑन बिग 106.2, किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग द टाइम राइट नाउ 7:04।
2: Bollywood.

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: InsuranceMarket.ae. What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. InsuranceMarket.ae.
1: The Big Thrill on Big 106.2. Brought to you by Dabur Shilajit. Aapki Jeet, Dabur Shilajit.
3: Ready, throw!
4: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Mm. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's, order now.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: 7:09, इट्स स्टिल 39, लो जाएगा अराउंड 37, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 52% पर।
1: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। बिग 106.2।

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: हां जी, मैं हूं मानसी. यह है बिग थ्रिल एंड ट्रैफिक में फंसे हुए अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं अमर.
3: यस मानसी जी, गुड इवनिंग टू यू.
2: गुड इवनिंग टू यू सर. ये क्या है, अभी तक घर नहीं गए? बीवी के फोन नहीं आए?
3: नहीं नहीं नहीं.
2: अच्छा, बड़ी अच्छी बीवी है. या फिर खुश रहती है कि आप देर से घर आते हो. क्यों नहीं घर पहुंचे?
3: पहले बोल दिया था. ट्रैफिक बहुत है दमास्कस स्ट्रीट पे.
2: ओए होए. अच्छा, मैंने एक अभी रिसर्च पढ़ी है. अब आप ऑफिस से घर जा ही रहे हो तो वो कहती है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था यूएस में, जहाँ पे एम्प्लॉयज को बोनस दिया और आधे एम्प्लॉयज को पिज्जा पार्टी दी. जिन्हें पिज्जा पार्टी दी उन्होंने बेहतर काम करा. तो उनकी रिसर्च के हिसाब से एम्प्लॉयज को इंसेंटिव नहीं, पिज्जा चाहिए होता है. कह दो कि ये झूठ है.
3: झूठी है.
2: आपके ऑफिस में क्या मिलता है, इंसेंटिव मिलता है या पिज्जा पार्टी में ही बस हो जाता है?
3: पिज्जा पार्टी तो नहीं होती है, इंसेंटिव होता है.
2: ना तो अच्छा ऑफिस है आपका. कई ऐसे ऑफिस हैं जहाँ पे पिज्जा में ही निपटा देते हैं. तो आप क्या ऐसा एचआर नहीं करता है कि पिज्जा खाओ और अप्रेजल भूल जाओ?
3: पिज्जा तो हम भी ले सकते हैं ना, अगर इंक्रीमेंट दिया तो या बोनस दिया तो.
2: तो आप इस रिसर्च से अग्री नहीं करते?
3: नहीं नहीं.
2: तो मिल रहा है ऑफिस में, हो रहा है इंसेंटिव अप्रेजल सब?
3: हाँ, अभी ये सिचुएशन के वजह से नहीं, बट जनरली मिलता है.
2: अच्छा, सीवी भेजे क्या? करते क्या हो आप, करते क्या हो?
3: मैं इंजीनियर हूँ.
2: अच्छा, वेरी नाइस. सो यू डोंट अग्री विद दिस रिसर्च. अगर आपको मौका मिले पिज्जा वर्सेस पैसा, यू विल टेक पैसा. यू विल बी मोर प्रोडक्टिव व्हेन यू गेट पैसा.
3: श्योर.
2: हाँ, आई थिंक ये देसी लोगों पे नहीं इन्होंने रिसर्च करी है, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी पिज्जा एनी पराठा, वी वॉन्ट पैसा. दैट इज वाई वी कम टू वर्क एंड गेट स्टक इन ट्रैफिक एवरी डे.
3: और हेल्थ का भी देखना है ना मानसी जी, पिज्जा खा के मोटा नहीं होना है ना.
2: ये देखो, फिटनेस फ्रीक का. चलो आप घर जाओ. आज बीवी ने क्या बनाया आपके लिए?
3: अभी देखेंगे क्या है.
2: अच्छा, पूछती नहीं है? सुनो नहीं. क्या बनाऊं, क्या खाओगे?
3: नहीं नहीं, वो तो
2: जमाने गए.
3: सरप्राइज होता है.
2: अच्छा, सरप्राइज होता
3: है.
2: तो ये हैप्पी सरप्राइज होता है कि
3: 90% हैप्पी होता है?
2: चलो गुड.
3: 10% कभी
2: वो 10% क्या, लौकी तोरी?
3: सही पकड़े.
2: मुझे लौकी तोरी बहुत अच्छी लगती है. पता नहीं लोगों को लौकी तोरी क्यों नहीं पसंद है. फिलहाल यू हैव अ ग्रेट ड्राइव बैक होम एंड आई होप लौकी तोरी ना हो, कुछ अच्छा बनाओ. ट्रैफिक में फंसे हैं तो कुछ अच्छा ही खाएं घर जाके. हैव अ ग्रेट इवनिंग.
3: थैंक्स अ लॉट.
2: बाय अमर. बाय. इनफैक्ट देयर इज अ पोल अप ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज 106.2 बिग एफएम कि क्या आपके ऑफिस में भी एचआर पिज्जा पार्टी देकर पी फॉर पैसा अप्रेजल देना भूल जाते हैं. गो एंड वोट व्हाइल आई कीप यू कंपनी विद सम फैंटास्टिक म्यूजिक. यह है बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है?
1: सरकार, मैंने कार में अलरस से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलरस कहाँ है? कहाँ है अलरस?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
2: अलरस है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलरस।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: Wow, your hair color looks stunning.
8: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
7: Yeah, right.
8: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
7: Really?
8: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
7: I'm buying it right now.
8: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
9: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
10: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
11: Still slow moving. अगर आप शेख मोहम्मद बिन जायद पे हैं, 22 to 25 minute delay. शेख जायद पे फिलहाल 18 minute का delay दिखा रहा है. Heavy traffic near Rasul Khur Industrial Area. If you're around the Dubai Creek Harbour, Festival City, again Hesse Street, JVC, JVT तक बहुत ही slow moving है. It is kind of packed and there is patchy traffic until Motor City. Also slow moving. अगर आप हैं around Discovery Gardens, anything else you'd like to report, मुझे बताइए 800-1062 पर.
10: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: देखो, इफ यू फील लेजी, टायर्ड, वीक द एंटायर डे, देन दिस इज फॉर यू. आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में वीक फील करना, कमजोर फील करना इज वेरी वेरी कॉमन. इतना स्ट्रेस है लाइफ में, प्लस फास्ट फूड, फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल, इट कैन ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू अस फीलिंग वेरी वेरी लो. बट अब टेंशन लेने की बात नहीं है. आई हैव गॉट द सॉल्यूशन. हैव डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स. दे हेल्प इंक्रीज योर मसल स्ट्रेंथ, योर स्टेमिना एंड योर पावर. अगर आप शेर की तरह मजबूत बनना चाहते हैं, देन अपने दिन की शुरुआत कीजिए विद डाबर शिलाजीत. 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं दैट विल मेक यू फील स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट. आपकी जीत विद डाबर शिलाजीत. डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, ये है बिग थ्रिल मानसी, एंड इफ यू लव रियलिटी शोज एज मच एज आई डू, यू एंड आई आर इन फॉर अ ट्रीट. मतलब बहारों फूल बरस गए हैं.

0: if you love reality shows as much as I do, you and I are in for a treat. मतलब बहारों फूल बरस गए हैं reality shows के. Lockup का ये finale week है. Alliance of course almost to the finale. Then Traitors की शुरुआत हो चुकी है. But the OG of all reality shows, Big Boss. Aye, aye, aye, aye. फाइनली जो है वो डेट आ गई है. मतलब मैं साल में दिवाली ईद क्रिसमस से ज़्यादा बिग बॉस का इंतजार करती हूँ. मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ सीज़न वन से. एंड जिंदगी में लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने होते होंगे. मेरा सपना है बिग बॉस के घर में जाना, चाहे मैं पहले हफ्ते आउट हो जाऊँ, क्योंकि मैं हो सकती हूँ, क्योंकि मैं बनती ऐसी हूँ कि हाँ मैं सबको चला लूँगी, लेकिन हूँ मैं थोड़ी सी भोलू टाइप की, तो वो लोग मुझे ही चला जाएंगे. तो बिग बॉस अब फाइनली शुरू होने वाला है 6 सितंबर से. एंड ऐसा कहा जा रहा है, ये रूमर्स हैं जो आई होप सच हो जाए, सीजन 20 है एंड भाई जान के साथ हो सकता है किंग खान भी इस साल का बिग बॉस होस्ट करें. एंड ये हिंट्स जो हैं वो भाई जान ने ही दिए हैं, गिविंग अस अ लॉट ऑफ करण अर्जुन वाइब्स.
1: हीरे कुफर करे आंख ना खड़े बॉडी संग मर मर.
0: सी आई एम वाचिंग अ लॉट ऑफ रियलिटी शोज. फराह खान, रितेश देशमुख, कुणाल खेमू, दे आर ऑल अमेजिंग, बट नो वन हैज द ऑरा लाइक भाई जान. Coming up in just a bit, right here on The Big Thrill. Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is the Big Thrill. Mansi, aaj hai 4th of August. Of course, it's Kishore Das' birthday. Unke saath Vishal Bharadwaj, my all-time favorite. Unka bhi birthday hai. Arbaaz Khan ka birthday. But we're also talking about this movie, jo aaj hi ke din 2017 mein release hui thi. Bahut hype thi around the movie. A lot of people did not like the movie. But I kind of liked the movie. मुझे अच्छी लगी. एक तो बहुत biased हूँ when it comes to इम्तियाज अली. But गाने भी बहुत कमाल थे. And in fact, इस movie का जो title है वो रणबीर कपूर ने suggest किया था. शाहरुख खान को initially अच्छा नहीं लगा था. But later he accepted it and paid रणबीर 5,000 rupees as reward. Before settling on the final title, the movie had names like The Ring, Rehnuma and Production Number 52. In fact, this was the first and the only time director इम्तियाज अली directed शाहरुख खान in a feature film. शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा and of course some brilliant music. Let me see how many of you remember the movie that I'm talking about.
2: देख सेजल, एक टाइम आएगा जब तुझे जाना हो, इसके पहले चाहे कुछ भी हो जाए, उस वक्त तुझे चले जाना, मुड़कर नहीं देखना कुछ.
3: Means कि मैं शायद नहीं जाऊंगी और अपनी शादी कैंसिल करके एंगेजमेंट तोड़ के मैं यहीं रह जाऊंगी.
1: अगर आपको याद आ गया, विच आई एम श्योर याद आ गया होगा, लोगों ने एक्चुअली काफी मिक्स्ड रिव्यूज दिए थे, बट देखी सबने थी. इट्स अ शाहरुख खान मूवी. याद आ गया तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2 The beat of Bollywood.
2: Hello.
3: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना। हेलो, सुन रहे हो ना?
4: Hey,

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, यह है Big Thrill and Mansi. I don't know if it's just me या फिर आप भी मेरी तरह हैं. अगर आपको कुछ अच्छा लगता है when it comes to food, आप उसे रोज खाते हैं. कोई गाना अच्छा लगता है तो आप उसे दिन में 50 बार सुनते हैं. कोई टीवी शो अच्छा लगता है तो आप उसी में गुम हो जाते हैं. अब मैं एक्चुअली स्प्लिट पर्सनैलिटी हूँ आजकल, क्योंकि मुझे लॉकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे मुसाफिर कैफे इतना अच्छा लगा दैट आई कांट वेट फॉर सीजन 2. यस, द शो हैड अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज because of all the kind of relationships I've had in the past. मेरे लव लाइफ में हमेशा ग्रे एरिया रहा है, तो मैंने काफ़ी रिलेट करा है इस शो से. एंड अनदर थिंग, आई एम फ्रॉम भोपाल. इस शो में भोपाल दिखाया गया है, भोपाल का दिल दिखाया गया है. सो दिस शो इज़ करेंटली ऑन माई नंबर वन लिस्ट. मैं ऑलरेडी 1.5 बार ये देख चुकी हूँ, मतलब एक बार मैंने पूरा देखा है और दूसरी बार आधा शुरू कर दिया है. बट आई हैव टू से द म्यूजिक इज़ फैंटास्टिक, स्पेशली ये गाना जो ट्रेंड कर रहा है नंबर वन पे. From Musafir Cafe, kickstarting this hour with

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत।
3: बिजी दिन हो या फिर टफ शेड्यूल, अपनी एनर्जी और एक्टिव लाइफस्टाइल का ध्यान रखना जरूरी है। डाबर शिलाजीत के साथ रहिए रेडी फॉर योर एवरीडे चैलेंजेस।
2: ताकत का तड़का विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
4: नमस्ते।
5: ओला।
4: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजोर।
6: नी हाओ।
2: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद Zia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Zia, your AI assistant at selfdrive.ae. Zia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Zia is waiting to assist you.
7: Don't miss your chance to get a big cash win with Bank Ticket.
8: A guaranteed 15 million dirham grand prize.
7: Plus 5 consolation prizes of 100,000 dirhams each.
8: And with Big Spin, the chance to win up to 1 million dirham.
7: Don't forget the 4 weekly cash e-draws of 25,000 dirham.
8: Buy now at bigticket.ae.
9: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.

0: 吗？
1: Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life, or business, call 800-ALFRED.
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: Good evening, keeping you company here, I'm Mansi, and we're talking about this movie, Imtiaz Ali ki movie, the first and the only time he directed Shah Rukh Khan. Box office pe kuch khas kamal is movie ne kiya nahi, but I don't know why, I like this movie. Right now we've got Peep Peep Peep Peep Pia, Ji Ji Ji Ji Ji Ya, Pia, yaad hai ye gana Pia? Ke main aa jaa rahi
4: hu. Yes.
3: कितने सारे गाने हैं एक्चुअली. आई वाज वंडरिंग पिया पिया ओ पिया पिया एंड पिया ओ पिया. यार बड़ा पॉपुलर नाम है पिया,
4: बट मेरा नाम पिया नहीं है, टिया है, टी फॉर थाईलैंड.
3: ये देखो इतने गाने मैंने गा दिए, सारे गाने सुन लिए और मैं कह रही है
4: मुझे समझ सही नाम नहीं है.
3: अब उम्र हो गई है मेरी, अब टिया घुटने मेरे जवाब दे रहे हैं, कान मेरे जवाब दे चुके हैं.
4: जैसे
3: शाम को तो बर्फ गिर रही है. I played your dialogue. Again, Imtiaz Ali, Shah Rukh Khan, Anushka Sharma movie. Aaj hi ke din 2017 mein release hui thi. Badi hype thi, but people somehow did not like the movie. The right answer is?
4: Jab Harry Met Sejal.
3: Absolutely correct. I loved the movie. In fact, I enjoyed the movie.
4: Yeah, I loved. I mean, I am a Shah Rukh Khan oldie, so I loved it.
3: शाहरुख खान वाज सो हॉट इन दिस मूवी, एकदम टिपिकल दिल्ली एक्सेंट, तू करके बात करना. आई डोंट नो, देयर वाज समथिंग वेरी चार्मिंग अबाउट हिम इन दिस मूवी.
4: या
3: तो इट वाज नॉट दैट बैड. आपने थिएटर में देखी थी कि नहीं?
4: एक्चुअली हमने थिएटर में देखी थी कि आई थिंक बिफोर कोविड, तब तक हम हॉल में ही मूवीज देखते थे.
3: अच्छा, उसके बाद?
4: उसके बाद से थोड़ा डामाडोल हो गया.
3: यार सबकी आदत बिगाड़ दी है ओटीटी ने. आई थिंक वी शुड जस्ट स्टार्ट गोइंग टू द थिएटर्स अगेन, बिकॉज दैट फील इज डिफरेंट. इट्स जस्ट कन्वीनियंट कि बीच में बंद कर दी फिर शुरू कर दी. बट अगर मैं जब हैरी मेट सेजल की बात करूँ, फेवरेट गाना कौन सा है टिया का इस मूवी से?
4: या उसके गाने बहुत अच्छे थे. नाउ दैट यू रिमाइंड मी, बनू में तेरी राधा.
3: देर इज अ वेरी अंडर रेटेड गाना फ्रॉम द एल्बम, इट्स कॉल्ड घर, जो बहुत खूबसूरत गाना है. बट राधा भी अच्छा है, फुर भी अच्छा है बीच बीच में. सो विच वन डू यू वांट मी टू प्ले? टिया, बिकॉज आपने मुझसे तीन गाने सुन लिए पिया पिया बन के, अब तो मैं आपको राधा सुना देती
4: हूँ. प्लीज, थैंक यू,
3: बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय,
4: यू टू,
3: बाय
4: बाय बाय.

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.

38, ये है बिग थ्रिल, मैं हूँ मानसी एंड यू रिकॉर्ड्स द फर्स्ट 50 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द ईयर, समर पीक्स. आज सच्ची में बहुत गर्मी है. खुद को ठंडा रखिए, दिमाग को ठंडा रखिए, क्योंकि माहौल काफी गर्म है. Just a bit. Isi ke saath, we've got this one from Bhai Jaan ki kick. Right here on the Big Thrill, main hoon Mansi.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

Big 106.2, the beat of Bollywood.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पाँच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आसमानी मदहोश किए जा मुझे तो कोई खींचे तेरी ओ
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।